अरे क्या करे क्या ना करे, मनाद कराने मनाद ना कराने, ये दिल क्या करे, मैं हद वित मनाद कराने, बलाव के टेक दाग मताक करना, ऐ ते दे अमत करना, ऐ खाओ दे, आई

आदरणीय थरंगा ओया तो सुबह मंदर हमरे आमद का करनत बेरी ए दक्कट पास से आतर गनत बेरी जीवित एक बार खड़ी अस देखिन दाखिन फुलो अन्ना के लाई तना हरि लासन के ने कभी हम होंगे में हित एक गन देनो करना कुछ रो रिदुनात आदरे नंग अथरी ने बैठ माई ये तो ने टोडा आदरे कर ला ओने टोडा विश्वास कर ला रिद गत हित ए आदरे आई ती हित अथरी अट पास से आय आवत तिबन विश्वास है आदरे ये विदियत नंती एने ने ए तमाय अत्त मंग रामनी

सुबह मंदर हमरा कादर नहीं था रंगा मंदर नौ आए ने ने इन नौ नौ नत वो या मटे ने वो या इन्ने ने वो या तुम्हारे दुनो आदरे माता के नौ एक अत मंदर नौ अपने दिपालु मकान नौ या ते हिद्दा हक लंगो नत बे ओ मैं आपे संसारे अंतिम हम वीम हम मैं की वर करना मामलाक माली पहाड़ मैटम निवी गया हिते दुख अहरन मागेंगो बवाहना ओ हे मन दुर बला दने ना आए गिया ना हिसाती मिटकरं हिमिंगे की बिंदीना और निवे यत्तमाई Barunevay Atthamayo Behitayinna Lakshri Das Virasingha Mathar Telijja Vilasita Barunevay Atthamayo

सुतरे आशीर्वाद उबे जीवित सुपत करत्वा। पारमिता उपपारमिता परमत्थ पारमिता पुरमिन सारा संख्येय कल्पलक्ष्य पुरा बुधु भव पेतु बोधिसत्व गुणय निसाम लोतुरा बुदुरजानन वहन्से लोदम अभिभावनय कलसेक ए सकलविध दिनीमे मंगल कारणा सत्यात्मय ए महा सत्यानुभावय उभे जीविते दिनीमे सत्यक्रियावम वेवा निरतुरु जय मंगल्यात्म वेवा।